0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 9 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN।
4: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जो आए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वक्तायती मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत विच में जंगबंदी मुमकिन थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमेशा अमन के दावेदार तौर से याद रखो वो। पाकिस्तान अमरीका ईरान विच में साल जो मुखलिस किरदार अदा कर रो है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन इस्तेहकाम की कोशिशों के अगते बढ़ा रो है। एतमाद के इजहार से ईरान अमरीका जहा शुक्रगुजार आय। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ की अमरीका के 250 सालगिरह तकरीर में शिरकत। सदर ट्रंप अमरीकी आवाम के आजादी के दिहाड़े की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म चो तो अमरीका जो 80 वड़ियों कंपनियों पाकिस्तान में 10 लख पाकिस्तान जवा अमरीकी शहरी बिन्हीं मुल्क विच में पुल आय। बुनियादी ढांचे के मनसूबन में अमरीका के सहकार के हमेशा याद रखो वो। घर वजीर मोहसिन नकवी की ईरानी मुंसिब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। शंघाई तावन तंजीम के घर वजीर जो इजलास दौरान मोहसिन नकवी इस्कंदर मोमिनी से बीहर मुलाकात थी। घर खाते के तर्जुमान मुजिब बतरफी लागापन इतने की सूरत हाल से गाल बोल कई गई। शंघाई तावन तंजीम के घर वजीर जो इजलास 4-6 जून तीन बिश्केक में जारी रह। पाकिस्तान अमरीका से ईरान के एटमी प्रोग्राम बाबत मालूमात शेयर करने रिपोर्टन के रद्द कर छोड़ो। परडे आफिस के तर्जुमान चो तो पाकिस्तान अमरीका से ईरान के एटमी प्रोग्राम बाबत का भी मुदा मालूमात शेयर न कई है। अड़ी रिपोर्टू बेबुनियाद गुमराह कदड़ हकीकतन के उबतड़ा इसाकदार अमरीकी परडे वजीर विच में 29 मई से थियल मुलाकात दौरान का इंटेलिजेंस शेयरिंग न कई हुई। पाकिस्तान की परडे पॉलिसी असूली मौकफ इलाके इस्तकाम गड़ियल एहतराम से बदल आया।

वफ़ाक़ी हुकूमत जो बेनरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबनि हवाले करण ऐं पंजाब मां ख़तम करण जो इशारो। राणा सनाला चयो आहे त बेनरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो मक़सद माण्हुनि खे फ़क़ीर बणाइण खां सवाइ ॿियो कुझु बि न आहे। पंजाब में बेनरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो को बि फ़ाइदो न आहे। जेकॾहिं को मनसूबो हिन प्रोग्राम खे जारी रखण चाहे थो त असांखे एतराज़ न हूंदो। पंजाब बेनरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी डेटा सही न हुजण सबब वॾे तमामु घणी करप्शन थी रही आहे। गिलगित मां मैंडेट घुर्जे त जीअं इस्लामाबाद वञी चई सघां त को ॿियो सूबो ठाहिण खां पहिरीं जीबी जो आवाज़ ॿुधणो पवंदो। गिलगित बस्तान खे मिल्कियत जो हक़ ॾियण लाइ जियालो वॾो वज़ीर खुटियल आहे। जीबी जे इलाइक़े गज़र में चूंड सिलसिले खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जी वधीक ज़रूरत आहे। ॿियनि पार्टियुनि वटि को बि सियासी नज़रियो न आहे। ज़बरदस्ती अमां ते हुकूमत करणु चाहिनि थियूं। नून लीग हुजे या का ॿी जमायत, ख़बर आहे असांजी कानून साज़ी थियण न ॾींदियूं। अहिड़ी तरमीम जो सभ खां वधीक फ़ाइदो पंजाब खे थियो। पंजाब जे मफ़ाद जो ख़्यालु न रखंदड़ जीबी जो कहिड़ो ख़्यालु रखंदा? पंजाब जा हक़ खाईंदड़ जीबी जे हक़नि खे विकिरो करे छॾींदा? फैसलाबाद खां सभ खां सस्ती अघ ते बिजली सिंध ॾींदी आहे। आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त बिलावल गिलगित खे पाकिस्तान जो फ़ख्रु समझे थो। बिलावल चाहे थो त जीबी जे नौजवाननि खे रोज़गार मिले। चूंडुनि में पीपी खे कामयाब कयो वेंदो।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: Minus ho sari tensions.
2: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib, Rishta, Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: करंट की कोशिशों का दो वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी इक्तसादी काउंसिल इजलास 8 जून के सदाए पर तो वजीर आजम सदर थे इजलास में चयनी सूबन जवाला वजीर आजाद कश्मीर जो वजीर आजम आरजीपी जो वो वजीर शरीक थी 9 जून के इक्तसादी सर्वे जारी किया वफाकी हुकूमत पारा ने माली साल की बजट 10 जून के कौमी असेंबली में पेश कई वेंदी।

नए माली साल जी वफाकी बजट में पानी मनसूबन लाइ केतरा पैसा रखा वेंदा केटीएन न्यूज तफसील करे वरता सिंध में रुगो पानी वाले मनसूबे लाइ पैसा रखने की तजवीज बजट तजावीजन मूजिब बजट में पानी जो रुगो एक नओ मनसूबो रखियो पियो बजट में शामिल नओ मनसूबो रया मीर बादशाह डैम बिजली जी पैदावार जो आहे रया मीर बादशाह डैम बिजली जनरेशन फैसिलिटी लाइ 50 करोड़ रूपया रखने की तजवीज दासो हाइड्रो मनसूबे लाइ बजट में 25 अरब रखने की तजवीज रया मीर बादशाह डैम लाइ 25 अरब रूपया रखने की तजवीज रया मीर बादशाह डैम लाइ जमीन हासिल करने लाइ 7 अरब रखने की तजवीज इन बजट में मोहम्मद डैम लाइ 39 अरब रूपया रखने की तजवीज वारसक हाइड्रो पावर स्टेशन की मरम्मत लाइ 4 अरब 28 करोड़ रूपया रखा वेंदा नए माली साल के बजट में कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई लाइ 13 अरब रखने की तजवीज सिंधु दरिया से टेल्टीमेट्री सिस्टम लगाने लाइ 5 अरब 76 करोड़ रखने की तजवीज मगला डैम के वार्ड वाले मनसूबे लाइ 4 अरब 59 करोड़ रखने की तजवीज दरबेला के 5 वार्ड वाले मनसूबे लाइ 3 अरब 40 करोड़ रखने की तजवीज दासो मनसूबे के कुल खर्च खातो 17 अरब का वधीक आहे त आमिर बादशाह डैम जो खातो 479 ए पावर हाउस की लागत 174 अरब रूपया आहे ममदा डैम की लागत जो शुरूआती खातो 309 अरब रूपया आहे 41 जारी मनसूबन के कम तेज कया वेंदो माली डुखियाऊं वे मनसूबन के वक्त सर तामीर में रिणक बढ़ियल।

पाकिस्तान अमरीका सां ईरान जी एटमी प्रोग्राम बाबति मालूमात शेयर करण वारे रिपोर्टनि खे रद्द करे छॾियो। परडेही आफ़ीस जे तर्जुमान शहवाद पाकिस्तान अमरीका सां ईरान जे एटमी प्रोग्राम बाबति का बि मालूमात शेयर न कई आहे। अहिड़ियूं रिपोर्टूं बेबुनियाद ऐं गुमराह कंदड़ ऐं हक़ीक़तनि जो उबतण आहिनि। हिसाकदार ऐं अमरीकी परडेही विच में 29 मई ते थियल मुलाकातनि दौरान का इंटेलिजेंस शेयरिंग नाहे कई वई। पाकिस्तान जी परडेही पॉलिसी असूली मौक़िफ़ इलाक़ई सिहाम ऐं गडि॒यल एतराम ते ॿधल आहे।

डील खां सवाइ भई ईरान जो यूरेनियम हासिल करे सघूं था, फौजी कार्रवाई थिए या गाजियूं, कामयाबी अमरीका जी थींदी। अमरीकी सदर ट्रम्प जो व्हाइट हाउस में तकरीब के खिताब में चवण हो तो मुआहदे तहत ईरानी एटमी हथियार नथो रखी सके, असा ईरानी क्यादत नेवी ए फिजाया के खत्म कर छो, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नथो करण चाहें पर मुआहदो थियण की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। लबनान की सूरत हाल की नजर रखनी पवी, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ए रूसी सदर प्यूटन मुलाकात कन तो सुठो लगन, भारत से व्यापारी मुआहदो जल्द थी सके तो, ईरान से मुआहदे बाबत भी जल्द खबर पेजी वेंदी।

सर वजीर मौसिन नकवी जी ईरानी हम मनसूब सिकंदर मोमनी से मुलाकात चगनाई तावन तंजीम के घरू वजीर के इजलास दौरान मौसिन नकवी ए सिकंदर मोमनी से बीहर मुलाकात थी। घरू खाते के तर्जमान मौजूद बतरफी लागापन खिते सूरत हाल से गाल बोल कई वही। शंघाई तावन तंजीम के घरू वजीर इजलास 4-6 जून तई बश्किक में जारी रहंदो।

0: गिलगित मां मेरिट घुर्जे त जीअं इस्लामाबाद वञी चई सघां त को ॿियो सूबो ठाहिण खां पहिरियां जीबी जो आवाज़ ॿुधणो पवंदो। गिलगित बल्तिस्तान खे मिल्कियत जो हक़ ॾियारण लाइ जियालो वॾो घुर्बल आहे। जीबी इलाइक़े गज़र में चूंड जलसे खे ख़िताब करे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत जी वधीक ज़रूरत आहे, ॿियनि पार्टियुनि वटि को बि सियासी नज़रियो न आहे। ज़बरदस्ती ऐं हुकूमत करणु चाहिनि थियूं। नून लीग हुजे या का बि जमायत, ख़बर आहे त असांजी कानून साज़ी थियण न ॾींदियूं। अरिड़हीं तरमीम जो सभ खां वधीक फ़ाइदो पंजाब खे थियो। पंजाब जे मफ़ादनि जो ख़्यालु न रखंदड़ जीबी जो कहिड़ो ख़्यालु रखंदा? पंजाब जा हक़ खाईंदड़ जीबी जे हक़नि खे विकिरो करे छॾींदा? फैसलाबाद खे सभ खां सस्ती अॻिते बिजली सिंध ॾींदी आहे। आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी चयो त
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
4: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: इट्स 11 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: यूं कामयाबी अमेरिका जीत हिंदी। अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीब के खिताब संस्वण हो तो मुआहदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सके। असा ईरानी क्यादत नेवी ए फिजाया के खत्म कर छो। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नथो करण चाहें पर मुआहदो थन की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। लबनान सूरत हाल से नजर रखनी पवी। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ए रूसी सदर प्यूटन मुलाकात कन तो सुठो लगन। भारत से व्यापारी मुआहदो जल्द थी सके तो। ईरान से मुआहदे बाबत जल्द खबर पेजी वी।

नथो सम्झा त पाकिस्तान में आहे, पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बहितर नमूने समझूं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा बि मज़बूत आहिनि।

0: फैज़गंज वेझो गोठ अलाजड़ियो शहर में कारे इल्ज़ाम हेठ भाव हथां भेण कतल। जवाबदार अली रज़ा शर कुहाड़ीअ जा वार करे टिन ॿारनि जी माउ सुगरा खे कतल कयो। जवाबदार फरार। न्यू सदाबाद में क़ौमी शाहराह जे होटल तां नामरूम लाश हथ। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस फौज लाश जी सुञाणप लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। राधन ग्रिल स्टेशन जे चौथे ॾींहुं बहाल न थी सघी। अंगारे ॾींहं खां बंदि थियल बिजली जी फरहमी बहाल न थियण सबबि समय ॻोठनि जी बिजली बंदि पयल। ग्रिड स्टेशन खे बिजली जी फरहमी मोकिलो थियण सबबि राधन थड़ी मोहबत नओं ॻोठ शाह पंज समेत ॿिन समय ॻोठनि बिजली खां महरूम। मुसलसल बिजली बंदि आहे जंहिं सबबि वरी अंग में इलाइक़ेवासी सख़्त अज़ाब भोगे रहिया आहिनि। सख़्त गर्मी सबबि चार ॾींहनि खां बिजली बंदि पयल आहे। रहवासियुनि जूं तकलीफ़ूं वधी वयूं। सिंधड़ी में घरोर शाख जे पुछड़ीअ ताईं पाणी न पहुचण ख़िलाफ़ आबादगरनि जो एहतजाज। खेपरो मीरपुर ख़ास रोड ते धरणो खयो वियो। आबादगरनि जो आपाशी अमले ते मुंड जे आबादगरनि खे पाणी वेकिरो करण जो इल्ज़ाम। पाणी चोरी रोके घरोर शाख जे पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: एक और संगे मील उबूर। इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील।

0: में मसरूफ अमल हैं। अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 69 तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर। हुकूमत सिंध।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: FM 91.6 सुंदर जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो।

0: تفریح سے رشتہ جوڑو, سنتے رہو جی ایف ایم 88.8.
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जी एफ एम 91.6.
2: इट्स 11:30 AM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

0: जदीद की सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

ऐं हर साल 5 जून ते सॼी दुनिया हिन खे वर्ल्ड आलमी माहौलियात जो ॾींहुं मल्हाईंदी आहे। ऐं हिन ॾींहं खे मल्हाइण जो मक़सदु माण्हुनि में माहौल जे तहफ़ बाबति शौर पैदा करणु ऐं धरतीअ खे गॾियल कोशिशुनि खे हथी ॾियणु आहे। तव्हांखे ख़बर आहे असांजो माहौल कुदरत जो हिकु क़ीमती तोहफ़ो अथव, जंहिंमें हवा, पाणी, ज़मीन, वण, ॿूटा ऐं जानदार शामिल आहे। अफ़सोस जो इंसानी सरगर्मियुनि सबबि माहौलियाती आलूदगी, ॿेलनि जी वाढी, पाणीअ जी खोट ऐं मौसमी तब्दीलीअ जहिड़ा संगीन मसाला पैदा थी रहिया आहिनि। उन्हनि मसलनि जे नतीजे में गर्मी पद में इज़ाफ़ो थियो आहे। ग़ैर मामूली बरसातूं, ॿोॾूं, ॾुकार, इहे समूरियूं सूरत हाल जेके आहिनि उहे सिर्फ़ इन्हनि जेके माहौल या इंसानी सरगर्मियूं आहिनि जेके माहौल लाइ नुक़सानकार आहिनि उन्हनि सबबि वञी करे थी रहियूं अथव। आलमी माहौलियात जो ॾींहुं असांखे उहो अहसासु ॾियारींदो आहे त माहौल जी हिफ़ाज़त सिर्फ़ हुकूमत जी न पर हर फर्द जी ज़िमेवारी आहे। जेकॾहिं असां वण पोखींदासीं, पाणी ऐं बिजली जो सही इस्तेमालु कंदासीं, प्लास्टिक जो इस्तेमाल खे घटाईंदासीं ऐं सफ़ाई जो ख़ासि ख़्यालु रखंदासीं त माहौल खे बहितर बणाए सघंदासीं। अॼु जे दौर में सिंध समेत सॼो पाकिस्तान मौसमी तब्दीलीअ जे असर खे महसूस करे रहियो आहे। शदीद गर्मी, पाणीअ जी खोट ऐं माहौलियाती आलूदगी असां लाइ वॾा चैलेंज बणिजी चुका आहिनि। उन करे ज़रूरी उहो आहे त असां माहौल दोस्त रवैया अख़्तियार करियूं ऐं ईंदड़ नसलनि जे लाइ हिकु साफ़, सिहतमंद ऐं सरसब्ज़ धरती छॾे वञूं। अचो त आलमी माहौलियात जे ॾींहं जे हवाले सां अज़म करियूं त पंहिंजे माहौल जी हिफ़ाज़त कंदासीं, वधीक वण पोखींदासीं ऐं धरतीअ खे सरसब्ज़ ऐं ख़ूबसूरत बणाइण में पंहिंजो किरदार अदा कंदासीं, छो त सिहतमंद माहौल ई बहितर ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे।

प्लेलिस्ट में ई मूंखे बि ॾाढो पसंदि आहे। उमेद तव्हां सभिनी खे इहो आबदा परवीन जो ज़बरदस्त ट्रेक पसंदि ईंदो।

शमन अली मिराली जो खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातू त प्रोग्राम में दोस्तनि जा मैसेजिस बि गॾु गॾु शामिल कंदा था हलूं, जेके प्यार ऐं मोहबत मथां असां ॾेई करे रहिया आहिनि। यासीन गुज़ारो सकरण खां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थियो आहे ऐं इहा था चवनि था त असांखे फोटो ज़रदारी जो कलाम ॿुधायो था। हाज़ुर प्यारा,

0: ऐं अदा जन चवनि था अस्सलाम वालेकुम अदा, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो जी अदा? बिल्कुलु मां ठीकु ठाक आहियां, ख़ुशि आहियां। तव्हां ॿुधायो, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो
1: मिठा?
0: फैज़ुलाबाद ॻोठाए ठरी मीरवाह जो उतां अदा जन जो ही ॿियो मैसेज आहे अब्दुल हक शर जो, ऐं चवनि था तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे ऐं ढोल फकीर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई त हाज़िर प्यारा तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूर ॿुधाईंदासीं। कमरदीन खां शमन अली सोलंगी, हुन सां गॾु आहे एहतशाम समीउल्ला नसरुल्ला सोलंगी, चवंदा आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शमन अली मीराली जे कलाम जी फरमाइश त प्यारा, शमन अली मीराली जो कलाम मां ॾिसो त तव्हां जे चवण खां बग़ैर ई प्ले करे छॾियो आहे, ऐं शमन अली मीराली जे कलाम हिन वक़्तु तव्हां उमेदु आहे त मज़ो बि शमन अली मीराली जे कलाम वधो हूंदो ऐं इंजॉय बि कयो हूंदो। ऐं अदा जन पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहिनि, त हुनखे स्पेशली मां पंहिंजे शो में भलीकार चवां थो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
6: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
5: जीए एफएम नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।
7: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा पी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो ले।

मैसेज आहे उन तरफ हलूं था सॻियो शहर खां। मोहम्मद छुटल इज़बानी पाण खे ॿुधी रहियो आहे, हुन सां गॾु आहे राशिद अली इज़बानी ऐं चवनि था त लाजवाब प्रोग्राम आहे। त अदाब मोहम्मद छुटल इज़बानी साहब ऐं राशिद अली इज़बानी साहब, महिरबानी आहे तव्हांजी, तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान तव्हां खे मां पंहिंजे हिन शो में स्पेशली भलीकार चवां थो। असां सां गॾु आहे दादू मोरो पुलखा मोहम्मद हुसैन मल्ला ऐं चवंदा था गुलाब खान असांजी पसंद जो सॉन्ग हलायो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जवान वैदा, वालेकुम सलाम भाउ मुंहिंजा, बिल्कुलु तव्हांजी पसंद जो सॉन्ग असां हलाईंदासीं। तव्हां ज़वार फिक्र जे सॉन्ग जी फरमाइश कई आहे न त उहो असां ज़रूर प्ले कंदासीं। त अखियूं तोमी सुपरी, अखियूं तोमी सुपरी, तूं अखियुनि में आहीं, अखियूं तोमी सुपरी, तूं अखियुनि में आहीं, अखियुनि खे अब्दुल लतीफ़ चए तूं भाई न भाई, अखियुनि खे अब्दुल लतीफ़ चए तूं भाई न भाई, अखियूं अॼु ताईं ॿेली आहिनि तुंहिंजे आसरे। ज़मान फिक्र जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजूं सुंदर तमातूं उमेद सभिनी खे पसंदि ईंदो।

मंजूर सखीराणी जी खूबसूरत आवाज़ तवाजो सुंदर समाधु तो मुझे मिठा सिंह प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती जो वक्त पहुंची है पंजी पुजाणी के वरण का मेरे हमेशा वगैरह तक चाहिए पांजो घणे का घणो ख्याल रखना कयो पांजन दोस्तन जो मिटन माइटन जो ख्याल रखना कयो पाड़े वारन जो ख्याल रखना कयो दोस्तन जो खास तौर ते जेके ही तेज तरीन गर्मी हली रही है गर्मी के डीह में पांजे नंढड़न बारन जो ख्याल रखना कयो इन वक्त वेकेशन हली रही है मोकलू हली रही है गर्मी जो पर बारन की ट्यूशन वगैरह भी दींदा कयो अगर माँ बारन जी पिड़ लिखल है तो वहाँ पांजे घर में पांजे बारन के तालीम जरूर दिए जड़े तरीके से घर में उनके तालीम मिलंदी स्कूल वारो माहौल मिलंद तो स्कूल जो कयल कम है वो हरगिज न विसर पांजे न्याणियों के दीनी तालीम जरूर दियो दुनियावी तालीम भी जरूर दींदा कर उम्मीद है मुझे इन गाल अमल कंदा अजोको दिहाड़ो जो है दुनिया में माहौलियाती तब्दीली जो दिहाड़ो है तो अजो एक वण जरूर पोखजो नंढड़ो हुए वो होतो हुए कोशिश कजो एक वण जरूर पोखियो वो वण पोखे कर फोटू व्हाट्सअप कर उम्मीद है तमाम मुझे यो शवन वठंदा इंशाल्लाह ताला हयाती रही त वरी तमा सा गड गड हुंदासी मुझे प्लेलिस्ट में हदीका क्याने जो आवाज आए डाडो जबरदस्त त हदीका क्याने जे आवाज सा गड गड इन प्रोग्राम जो भी वक्त पहुंची है पनी बुझाने ते हयाती रही त वरी गड हुंदासी अलह वाही अलह निगहबान।

राधन ग्रिड स्टेशन जे चौथे ॾींहं बि बिजली बहाल न थी सघी। राधन थरली मोहबत नओ ॻोठ शाह पंज समेत ॿियनि ॻोठनि बिजली खां महरूम। सख़्त गर्मी सबबु रहवासी परेशान। मीरपुर माथेरो में बि वकीलनि

कोर्ट के ज़रिए चइनि ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली जी बहाली लाइ एहतजाज। बिजली बहाल करण जो मुतालबो। सखर में बि गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां बिजली बंदि सबबु शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणी फराहम करण जो मुतालबो।

सिंधड़ी में गरोड़ शाह के पुछड़ ताई पानी न पहुंचने खिलाफ आबादगारों जो एहतजाज छिपलो मीरपुर खास रोड से धरणो बहायो पो आबादगारों जो आपाशी हमले से मुंड के आबादगारों के पानी जगह करण जो इल्जाम पानी चोरी रोके गरोड़ शाह के पुछड़ ताई पानी पहुंचाने जो मुतालबो।

0: फैजगंज अदालत में पानी की खोड़ खिलाफ गुस्से की आवाज कर दरख्वास्त बुधणी अदालत इंदर बुधणी से चीफ जस्टिस ने रायसीन खैरपुर के जाती हैसियत में तलब कर वरतो। एसडीओ के कावड़ जो इजाद टिन दिन में पुछड़ी ताई पानी पहुंचाए तस्वीरों से गर रिपोर्ट पेश करण जो हुक्म। सिंध के मुख्तलिफ शहर में एसटीपी जा एहतजाज शहीद मेमन के बाजियाब कराए महंगाई के जब्त आने जो मुतालबो। गनकोट चंबर फया सिटी वाड़ो ए बिन शहर में एसटीपी पारा एहतजाज किया वो जायजो सिंध में मंचाज विक्रो जारी है। अमन अमान की सूरतहाल भी खराब है, अमन बहाल कराया वे।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीएएफएम 91.6।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

ஒரு பல்ல விசால துணிஞ்சோம், ஒரு பல்ல விசால

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: एक और संगे मील उबूर, इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

എപ്പോഴും തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടി. डील का सिवाय भी ईरान यूरेनियम हासिल कर सौजी कार्रवाई थिए या गालियों कामयाबी अमरीका जी थी. अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीर के खिताब चवण हो तो मुहारे तहत ईरान एटमी हथियार न तो रखी सके. असा ईरानी कायदत नेवी ए फिजाए के खत्म कर छो. ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात न तो करना चाहें पर मुहिदो थे सत में मुलाकात मुमकिन है. लबनान सत्य हाल से नजर रखनी पवी. यूक्रेनी सदर आए रूसी सदर प्यूटन मुलाकात कन तो सुठो लग. भारत से व्यापारी मुआदो जल्द थी सके तो. ईरान से मुआदे बाबत भी जल्द खबर पैजी वेंदी.

फैजगंज वेझो घोट अलाजड़ो शहर में कारे इल्ज़ाम हेठ भाउ हथां भेण कतल। जवाबदार अगज़ा शहर कुहाड़ी जा वार करे टिन बारनि जी माउ सुगरा खे कतल कयो, जवाबदार फरार। न्यूसैदाबाद में क़ौमी शाहरा जे होटल तां लाश हथ, पुलिस मूजिब लाश जी सुञाणप कराची वासी इरफान पठाण जे नाले सां थी आहे। फोती गाॾनि जो मिस्त्री हो। रादण ग्रिड स्टेशन जे चौथे ॾींहं बि बिजली बहाल न थी। रादण थड़ी मोहबत नौगोट शाह पंज समेत सवें ॻोठनि जी बिजली खां महरूम। सख़्त गर्मी सबबि रहवासी तकलीफ़ में। मीरपुर माथिलो में बि वकीलनि जो घोटकी ज़िले जे चइनि ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली बहाल लाइ एहतजाज। बिजली बहाल करण जो मुतालबो। सखर में बि गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां बिजली बंदि सबबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में पाणी शरीर खोर पैदा थी वई। रहवासियुनि जो एहतजाज। बिजली बहाल करे पाणी फराहम करण जो मुतालबो। सिंधड़ी में गरोड़ शाख जे पुछलीअ ताईं पाणी न पुछण ख़िलाफ़ आबादगरनि जो एहतजाज। खिपरो मीरपुर ख़ासि रोड घणो खां पियो। आबादगरनि जो आबाशी अमले ते मुंड जे आबादगरनि खे पाणी बेको करण जो इल्ज़ाम। पाणी चोरी रोके गरोड़ शाख जे पुछण ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फैज़गंज अदालत में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ उसरी जी आबादगरनि जी दरख़्वास्त ॿुधणी। अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते चीफ इंजीनियर ऐं एक्सएन खैरपुर खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। एसटीओ ते कावड़ जो इज़ार। टिनि ॾींहनि में पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाए तस्वीरुनि सां गॾु रिपोर्ट पेश करण जो हुकम। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एसटीपीअ जा एहतजाज। सही मेमनि खे बाज़ियाब कराए महांगाई जो ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। कनकोट चंबड़ भरिया सिटी उबाड़ो ऐं ॿियनि शहरनि में एसटीपी पारां एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि चयो त सिंध में मुमताज़ जो वेकिरो जारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल बि ख़राब आहे। अमन बहाल कराए वञे। कनकोट ऐं बरपासी मुरड़ी ते ज़ाब्तो न आयो। उरड़ी वॻे वधीक ॿ ॿार फोत। टिनि वरनि जो इलाज बख़्शी ऐं चइनि वरनि जो सोनो लाशारी उरड़ी वॻे फोत थी विया। शहरनि जो चवणा त उरड़ी इलाइक़े में तेज़ीअ सां पखिड़जी रही आहे। सिहत खातो नोटिस वठे टीमूं मोकिले। कंबर में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलतुनि जी खोट ख़िलाफ़ धरणो। ॻोठ लश्करी चांडियूं ऐं ॻोठ टपाल वासियुनि वगन रोड ते टायर साड़े धरणो हयो। ॻोठाणनि मूजिब ॻोठ में के बि सहूलतूं न आहिनि। सरकारी सहूलत प्लेटूं ॻोठाणनि खे ॾियण बदिरां वेठो थियूं। नोटिस वरितो वञे। शागिर्दी आसपा मोकिल बाज़ियाब न थी सघी। नारी जे बाज़ियाबी लाइ वासन सियासत मां जुड़नि जो एहतजाज। मुज़ाहिरनि चयो त आसपा केतिरा हुसैनाबाद मां ॿ फेबरवरी ते स्कूल अगवा कयो वियो। पुलिस नारी खे बाज़ियाब करण में नाकाम थी वई आहे। बाज़ियाब कराए वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: और संगेमील उबूर, इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, न सिर्फ उसी अवामी।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: विद माइक्रोबीट्स फार्मोलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच

सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
4: हम लाइव 5 करोड़ रखण जी तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वापारी अदालतनि जे क़याम लाइ कानून साज़ी जो फ़ैसिलो करे वरितो मसूदे जी तयारी लाइ कमेटी क़ाइम कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कामेटी जो कन्वेनर मुक़ररु अटॉर्नी जनरल नाणे वारे मुल्कती वज़ीर ऐं कानूनी माहिर कामेटी में शामिल कमेटी वापारी अदालत जे क़याम बाबति कानूनी मसूदो तयार कंदे कामेटी वापारी तकरारनि जे निज़ाम जो जाइज़ो वठी सिफ़ारिशूं पेश कंदी कानूनी नुक़्तनि ते तफ़सीली रिपोर्ट बि तयारु डील खां सवाइ बि ईरान जो यूरेनियम हासिल करे सघूं था फ़ौजी कार्रवाई थिए या गाजियूं कामयाबी अमरीका जी थींदी अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीब के ख़िताब संदसि चवण हो त मुआदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे असां ईरानी क़यादत नेवी ऐं फिज़ाया खे ख़तम करे छॾियो ईरानी सुप्रीम लीडर सां बि मुलाक़ात मुमकिन आहे लबनान जी सूरत हाल ते नज़र रखणी पवंदी यूक्रेनी सदर ऐं रूसी सदर मुलाक़ात कनि त सुठो लॻंदो भारत सां वापारी मुआदो जल्द थी सघे थो ईरान सां मुआदे बाबति बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी ईरान जंग नथो चाहे जारियत थी त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची शहवाज ईरान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे तेहरान कंहिं बि हमले जी सूरत में पंहिंजो दिफ़ा करण सां गॾोगॾु भरपूर जवाब बि ॾींदो ईरान खिते में तकरारनि जो कॾहिं बि हामी न रहियो
5: на границе
6: вот
5: ситуации между небольшой страной
6: и
5: двусторонней связи.
6: И,
5: конечно, есть и большое значение для Пакистана.
6: Пакистан.
4: नथो समुझां पाकिस्तान चीन जे कंट्रोल में आहे पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने समुझूं था रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि रूस ऐं चीन जा लाॻापा मज़बूत आहिनि

वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सदारत हेठि कणक जी ख़रीदारी ऐं ज़खीरनि बाबति इजलास, वॾे वज़ीर पारां कणक जी ज़खीरा अंदोज़ी रोकण ऐं महांगाई जो ज़ाब्तो आणण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो त कणक जी मुनसिपाणी विरस लाइ ज़रूरी क़दम खया वेंदा, आबादगरनि ऐं वापेदारनि जे मफ़ादनि जो तहफ़ कयो वेंदो। आज़ाद कश्मीर में आम चूंडनि लाइ 27 जुलाई ते थींदियूं शेड्यूल जारी। नोटिफिकेशन मूजिबि आज़ाद कश्मीर जे कानून साज असेंबली लाइ उमेदवार 9 जून खां 29 जून ताईं नामज़दगी कागज़ वठी सघंदा ऐं जमा कराए सघंदा। कागज़नि छंडछाण 20 जून ते थींदी, अपीलूं 21 खां 24 जून ताईं दाख़िल थींदियूं। उमेदवार 30 जून ताईं हथ खणी सघंदा।

0: अक्टूबर 2025 शिकारपुर पुलिस लाइन में घरू वजीर ज़ियालन जा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमुन सामू धाड़ियल हथियार फिटो कारन के सरेंडर पॉलिसी तहत उल्लेख हो शिकारपुर पुलिस वट सरेंडर थियल धाड़ियल ते 4 करोड़ का इनाम वारन के जाती जणन जा ठाह करण मुखबर तौर बिन धाड़ियल ला छड़।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो 0.6।
3: इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो।